0: हर हर हर हर
1: हर हर हर हर
0: होरी होरी होरी हो
1: होरी होरी होरी हो
0: यापले बीप बीप
1: यापले बीप
0: कुरली कुरली कुरली कुरली कुरली कुरली आ Oh, I always got by with my hidey high. I thought that bop wouldn't last but a little while.